0: लेकिन चेन कहते हैं कि सरकार के पास स्पष्ट सालाना लक्ष्य नहीं है और 2030 का लक्ष्य भी नाकाफी है।
1: हम एक ऐसा रहने लायक पर्यावरण चाहते हैं जिसमें बाहर थोड़ी सी वॉक के बाद कपड़े ना बदलने पड़े। मेरे लिए एक बुनियादी मानवाधिकार है, लेकिन ताइवान ने इसे हासिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि पहले गर्मियों में 25 या 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता था और बाहर भी ठंडक रहती थी, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया।
0: ताइपे हमेशा से गर्म रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में तापमान बेकाबू होता जा रहा है। ताइवान में 2025 में अब तक का सबसे गर्म अक्टूबर दर्ज किया गया, जबकि 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा था। उत्तर में होने के बावजूद ताइपे दक्षिणी ताइवान से ज्यादा गर्म रहता है।
2: ताइपे कटोरे के आकार का एक बेसिन है जिसके तल में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। तापमान बढ़ने पर ताइपे जल्द गर्म हो जाता है।
0: सू पिंग लिन शहरी गर्मी के विशेषज्ञ और राष्ट्रीय चेंगकुंग यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर के प्रोफेसर हैं। वो हमें हीट टूर पर ले जाते हैं और हीट आइलैंड इफेक्ट से जूझ रहे ताइपे के सबसे गर्म कोने दिखाते हैं। लाल रंग में दिख रही जगहें इलाके के सबसे गर्म हिस्से हैं।
2: वानहुआ में सड़कें सक्रिय हैं, तो बाहर से हवा का आना मुश्किल होता है। आसपास की इमारतें सौर विकिरण को सोख लेती हैं, जबकि एसी सिस्टम सड़कों पर गर्म हवा फेंकते हैं। इसका मतलब ठंडक लाने वाली हवा अंदर नहीं आ सकती और गर्म हवा बाहर निकल नहीं सकती, इसलिए तापमान ज्यादा रहता है।
0: प्रोफेसर लिन
3: ये ते एक पर्टिकुलर क्योंकि इस जगह दी जड़ी शेप पैदा नहीं बनी है कि भी ये इंडिया दे वैसे शहरों के बारे भी यही कहा जाता क्योंकि उस तरह दे बनाता गया है। इन्ने एसी लगे ने वो गर्म हवा कड कड के बाहर सड़कों में सुट्टी जाते हैं। सड़कों के उत्ते कहने तो 35 डिग्री है, बट जे कहते सड़कों का टैंपरेचर मेयर किया जाए तो 65 डिग्री तक भी इन गर्म सड़क जुड़िया ने पिछे जी आप देखा यूरोप भी सारा गर्मी के पिघल रहा है, सड़क पिघल रही थी। कैनेडा के भी हालात जोड़े वो देखे। सो इनवायरमेंट के नाते वाकई बहुत ज्यादा नुकसान जोड़ा वह हो रहा है। तो आई थिंक भी सू सारे रल मिल के कुछ ना कुछ ये बारे जरूर करना चाहिए जो भी आप कर पाइए तो ताकि आप कहते लाइए जिन्ना भी वो कम कर सकी। हूँ ओ एक चीज मेरे सामने आई है रिपोर्ट मैं सुनी तो वैसे मैं भी बड़ा हैरान रह गया भी आप कभी भी इन्होंने चीजों के इन्ना ध्यान देंगे नहीं। आप सोचते चलो कपड़े जो कुछ नहीं लभदा तो बंदा की कहना भी चलो शॉपिंग कर आओ थोड़े बहुत कोई समान खरीद लो। तो स्पैशली क्योंकि हर इंसान चाहता होंगे भी मैनू वधिया तो वधिया कपड़े तो चंगे हो जो इस तो बाद मैं अपने घर च अपने इर्द गिर्द नजर मार दा तो वाकई आप इस तरह दी शॉपिंग कर करके तो घर जड़े ने वो ए समान नहीं भर देने जिंदी जरूरत ही नहीं होंगी। बट क्योंकि सिस्टम ही इदा का बनया वो सानू मोटिवेट करता भी आप सारे रल मिल के वो तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करिए तो पैसे भी जाते जाते ने बट वो जो आप पोल्यूशन इनवायरमेंट के उत्ते जो धक्का करते हैं तो होर जो चीजा क्योंकि बहुत नुकसान जरा आप कर रहे हैं जनरेशन जी सा बारे थोड़ा जहा ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट सुनते हैं तो आई होप भी तुम ये रिपोर्ट जी पसंद करोगे। बट रिपोर्ट तो पहला जिदा मैं एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक लैनी ब्रेक लैके तो फिर वापस मिलते हैं बाकी दी जी खबर से गल बात जो इसे तरीके जारी रखा। सबदंग रेडियो 94.7 FM जरा कि थर्सडे फ्राइडे शाम 7 to 8 तो संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनते हो। मैं राजेश ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜਾਬ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ
4: ਬਾਤ। ਫੀਮੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5: ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਵੈਲ ਕੇਅਰਡ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।
4: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
5: ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ।
4: ਕਾਲ ਕਰੋ 5873360 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ।

0: वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
1: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
0: थोड़े परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी।
2: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: फास्ट बनाओ। उस समय में फैशन इंडस्ट्री में साल में दो सीजन होते थे, गर्मियों के कपड़े या सर्दियों के कपड़े। जब भी एक नया डिजाइन आता था कपड़ों का, स्टोर तक पहुंचने में 6 महीने लगते थे। लेकिन जारा ने ये पूरा सिस्टम बदल दिया। अमानसियों ने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां एक नया डिजाइन सिर्फ 15 दिनों में स्टोर तक पहुंच सकता था। अब साल में 52 माइक्रो सीजन इंट्रोड्यूस किए गए, जिसका मतलब कि हर हफ्ते कपड़ों की नई कलेक्शन आएगी। कस्टमर्स जब भी स्टोर में आए उन्हें कुछ ना कुछ नया मिले, जिससे कि एक अर्जेंसी बनती थी कि अगर अभी नहीं खरीदा तो अगले हफ्ते तक कपड़ों का ये डिजाइन गायब हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा करने से सेल्स बढ़ी, लोग और कपड़े खरीदने लगे और इस मॉडल के चलते जारा दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बन गया। बाद में ऐसी कई कपड़ों की कंपनीज आई, H&M, प्राइममार्क, फॉरएवर 21, सब ने इस मॉडल को कॉपी किया और इसे नाम दिया गया फास्ट फैशन। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, करंट ट्रेंड्स के हिसाब से जल्दी बल्क में सस्ते कपड़े बनाना। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली गेम चेंजर बनी चाइना की शीन कंपनी। शीन एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है जो रोजाना लाखों इमेजेस, वीडियोस और सर्चेस के आधार पर ऑलमोस्ट रियल टाइम में बताता है कि कौन सा डिजाइन हिट या फ्लॉप होगा और उसी के हिसाब से ऑर्डर्स दिए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के इस इस्तेमाल से शीन ने फास्ट फैशन को अल्ट्रा फास्ट फैशन बना दिया। इस कंपनी में कपड़ों को डिजाइन से लेकर रेडी टू सेल तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन का समय लगता है और हर दिन यहां 2000 से लेकर 10,000 नए स्टाइल्स ऐड किए जाते हैं। जितने कपड़ों के नए डिजाइन जारा एक साल में लॉन्च करता है, शीन उतने एक हफ्ते में कर देता है। इसका नतीजा ये कि आज ग्लोबली हर साल 100 अरब से लेकर 150 अरब कपड़े बनते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि साल में दुनिया के हर इंसान के लिए लगभग 14 कपड़े बनते हैं।
1: What?
0: इसका मतलब समझ रहे हो, मैंने पिछले 10 सालों में 14 टी-शर्ट्स नहीं पहनी होंगी, लेकिन दुनिया में सप्लाई इतनी ज्यादा है कपड़ों की कि हर एक इंसान दुनिया का साल में 14 नए कपड़े पहन सकता है।
2: We are a society that likes to shop.
3: I have a problem.
4: Oh my goodness, there's so much.
0: आज टोटल दुनिया में इतने कपड़े हैं कि अगली 6 पीढ़ियों तक के लिए ये काफी हैं। लेकिन जानते हो कितनी बार ये कपड़े पहने जाते हैं? ऑन एवरेज एक कपड़ा सिर्फ 7 से 10 बार पहना जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। यहाँ सिर्फ अमेरिका जैसे देशों की बात नहीं हो रही, इंडिया में भी 41% कपड़े सिर्फ 1 से 2 बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या लोग अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं या फिर उनसे ये करवाया जा रहा है। फास्ट फैशन कंपनीज ने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके शॉपिंग करने को एक एडिक्शन बना दिया है। सबसे पहले है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों के मन में परसेप्शन पैदा किया जाता है कि अगर वो हर माइक्रो सीजन कुछ नया खरीदेंगे नहीं तो वो ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनेंगे और मिस आउट कर देंगे। फिर आता है डोपामिन फैक्टर। जब आप ऑनलाइन कुछ ऐसा देखते हो जो आपको पसंद आए तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो गैम्बलिंग, सोशल मीडिया और ड्रग्स एडिक्शन में काम करता है।
5: अकॉर्डिंग टू एनालिसिस प्रोवाइडेड बाय द फेशियल ट्रैकिंग कंपनी इनविजो, शी इज ऑन अ शॉपिंग हाई।
0: जब हमें कोई चीज सस्ते में मिल जाती है तो इससे और भी ज्यादा प्लेजर मिलता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकियाट्रिस्ट एना लेमकी के मुताबिक इंटरनेट ने शॉपिंग जैसी सिंपल चीज को एक ड्रग की तरह बना दिया है, जो ड्रग्स और अल्कोहल जैसे ही रिवॉर्ड पाथवेज एक्टिवेट करती है हमारे दिमाग में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एड्स पर पैसा फेंक कर एक ऐसा कल्चर बना दिया जाता है जो ओवर कंजम्पशन को सेलिब्रेट करता है। टिकटॉक पर हैशटैग शीन के 25 बिलियन व्यूज हैं। हॉल वीडियोस करके एक नई कैटेगरी बना दी गई है जिनमें इन्फ्लुएंसर्स कैमरे के सामने बैठकर 10-15 कपड़े अनबॉक्स करते हैं और पहनकर दिखाते हैं। और इस स्टाइल के वीडियोस ऑर्गेनिक नहीं है। शीन जैसी कंपनीज छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को फ्री कपड़े भेजती है और कहती है बदले में हॉल कॉन्टेंट बनाओ। इन्फ्लुएंसर्स को लगता है क्या फर्क पड़ रहा है, इतना आसान वीडियो बस कपड़े पहनते हुए वीडियो बनाना है, बदले में फ्री कपड़े मिल रहे हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। लेकिन ऐसे हजारों लाखों वीडियोस के थ्रू ओवर कंजम्पशन को ग्लैमराइज किया जाता है। आज के दिन अकेले इंडिया में 72% जेंजी शॉपर्स क्रिएटर से शॉपिंग इंस्पिरेशन लेते हैं। और इस कल्चर की सबसे टॉक्सिक चीज ये है कि दोबारा सेम कपड़े पहनने को शेम की नजर से देखा जाता है, बेइज्जती की नजर से देखा जाता है। ब्रिटेन में 3 में से 1 यंग महिला कपड़ों को 1 या 2 बार पहनने के बाद पुराना मान लेती है। और हर 7 में से 1 लड़की का मानना है कि सेम आउटफिट में दोबारा फोटो खिंचवाना एक शर्म की बात है। ये मेंटालिटी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो चुकी है कि मैंने इस आउटफिट में 1 पोस्ट कर दिया, अब दोबारा से रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। और ये कल्चर अपने आप नहीं बना है, बार बार पैसे फेंक फेंक कर बनाया गया।

स्पेंसर ने तो लिटरली अपने इस आर्टिकल में सच बताया कि कैसे मुझे हर पोस्ट के लिए नए कपड़े पहनने के लिए पैसे मिलते हैं, तो मैं क्यों सेम कपड़े पहनूं। इस पूरे कल्चर को बनाया और बढ़ावा दिया गया इन कंपनीज के द्वारा, ठीक वैसे ही जैसे डायमंड्स के साथ किया गया था। अगर आपको मेरा डायमंड्स वाला वीडियो याद हो तो ये जो डायमंड्स आर फॉरएवर की लाइन है, अक्सर कही जाती है ना कि डायमंड्स तो हमेशा के लिए होते हैं, डायमंड्स आर फॉरएवर, ये पूरी की पूरी चीज एक मार्केटिंग कैंपेन थी डायमंड कंपनीज के द्वारा। लोगों को ऐसा दिखाया गया कि देखो अगर आपकी एंगेजमेंट हो रही है तो आप एक डायमंड रिंग गिफ्ट करो। सेलिब्रिटीज को पैसे देकर, मैगजीन्स में छाप कर, न्यूज के थ्रू ये मैसेज पहुंचा कर। अगर उस वाले चीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो डायमंड वाला वीडियो देख। लेकिन बात यह है दोस्तों कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री में भी यही चीज हुई और इसी की वजह से आज लोग अपनी जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीद रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ आपकी जेब पर नहीं बल्कि आपकी हेल्थ पर भी हो रहा है। आज के दिन 60% कपड़े प्लास्टिक से बने होते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सारी चीजें प्लास्टिक हैं। जब आप ऐसे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोते हो तो एक सिंगल वॉश में 7 लाख से लेकर 60 लाख तक माइक्रोफाइबर्स निकलते हैं इन प्लास्टिक्स के, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। ये प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, 5 मिलीमीटर से भी छोटे। तो एक चीज तो पक्की है कि आपको इन प्लास्टिक वाले मटेरियल से दूर रहना चाहिए, इनके कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन सवाल फिर ये है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है कपड़ों का। एग्जैक्टली इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये फ्री PDF गाइड बनाई है आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, जिसमें 28 कपड़ों के मटेरियल को रैंक किया गया है। इन सबको एनवायरमेंट और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से स्कोर किया गया है ताकि आप आसानी से जान पाओ कि कौन से मटेरियल के क्या फायदे और क्या नुकसान है। प्लस इसी फैब्रिक स्कोर कार्ड की गाइड में मैंने बताया है कि कौन से सिंबल्स का आपको ध्यान रखना है कपड़े खरीदते वक्त, कौन से मार्क्स एक्चुअली में क्वालिटी दिखाते हैं और कौन सी बस मार्केटिंग टर्म्स है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 100% फ्री टू डाउनलोड है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब आइए थोड़ा माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में और गहराई से जानते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इन्हें फिल्टर नहीं कर पाते और ये सीधे हमारी नदियों में और समुद्र में चले जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक स्टडी के मुताबिक ये प्लास्टिक के बने कपड़े माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है। लगभग 35% पॉल्यूशन के लिए यही जिम्मेदार है और केवल लॉन्ड्री से लगभग 5 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक फाइबर्स हर साल ओशन में जाते हैं। ये नंबर जानते हो कितना बड़ा है? ये 3 अरब पॉलिएस्टर शर्ट्स या 50 अरब प्लास्टिक बॉटल्स के बराबर है। ये माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ समुद्र में नहीं रहते, साइंटिस्ट ने इन्हें ह्यूमन लंग टिश्यू, खून, लिवर, किडनी, पेट, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क और अनबॉर्न बेबीज की प्लेसेंटा तक में पाया है। यानी इस फास्ट फैशन इंडस्ट्री की वजह से आपके खून तक में प्लास्टिक पहुंच गया है। आपके अंदर जाकर ये माइक्रोप्लास्टिक्स ऑक्सीडेटिव डैमेज, DNA डैमेज और जीन्स में बदलाव ला सकते हैं। और हालांकि इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं करी गई है, लेकिन इनका कैंसर से भी लिंक पाया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिएस्टर या प्लास्टिक के बने कपड़ों से इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के देशों के बीच मौजूद है एरल सी, जो कभी दुनिया की 4th सबसे बड़ी लेक हुआ करती थी। यहाँ मछलियों की 24 स्पीशीज थी, थ्राइविंग फिशिंग कम्युनिटीज थी, हरे भरे जंगल थे, लेकिन आज ये जगह एक रेगिस्तान है। यहाँ से कार्सिनोजेनिक डस्ट उड़कर गांव में पहुंचती है, थ्रोट कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस फैलाती है, और इस सब के पीछे कारण है कॉटन। एरल सी का सारा पानी उज़्बेकिस्तान की कॉटन फार्मिंग के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके कारण आज ये जगह रेगिस्तान बन चुकी है। आप सोचोगे लेकिन इतना पानी, क्या सही में इतने पानी की जरूरत है कॉटन फार्मिंग के लिए? दोस्तों एक सिंगल कॉटन टी शर्ट बनाने में 2,700 लीटर पानी खर्च होता है, जो एक इंसान की 2.5 साल की ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत पूरी कर सकता है। एक पेयर ऑफ जीन्स बनाने में लगभग 7,500 लीटर पानी लगता है, जो एक इंसान की 7 साल तक की जरूरत के लिए काफी है। और जो पानी इस्तेमाल होता है वो वापस नदियों में जहर बन के लौटता है पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से। क्या आप जानते हो दुनिया का 20% ग्लोबल इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से आता है? तमिलनाडु का तिरुपुर शहर इंडिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर है, लेकिन इसकी कीमत, यहाँ इस शहर में पानी का लेवल हर साल 15 मीटर गिर रहा है। नोयल नदी, जो कभी साफ पानी का सोर्स हुआ करती थी, आज टॉक्सिक सीवर बन गई है, क्योंकि कपड़ों की फैक्ट्री सालों से करोड़ों लीटर वेस्ट वाटर सीधे इस नदी में रिलीज कर रही है। इस टॉक्सिक वेस्ट वाटर की वजह से नदी के 2 किलोमीटर के दायरे में जमीन बंजर हो गई है और ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो चुका है। साल 2011

0: में मद्रास हाईकोर्ट ने इन फैक्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि ये फैक्ट्रीज अभी भी रात में या बारिश के दौरान केमिकल वेस्ट नदी में बहाती हैं। और तिरुपुर अकेला नहीं है, दिल्ली के पास यमुना नदी में जो पिंक केमिकल फोम दिखता है वो टेक्सटाइल वेस्ट वाटर के फॉस्फेट्स की वजह से है। मुंबई के पास वालधुनी नदी टेक्सटाइल डाइज की वेस्ट की वजह से लाल रंग की हो जाती है। और फास्ट फैशन का असर केवल वाटर पॉल्यूशन तक सीमित नहीं है, फैशन इंडस्ट्री ग्लोबल कार्बन एमिशंस का 8-10%
1: amount of waste and the proportion of carbon pollution that comes from the fashion industry is extraordinary. It's about 10% of global carbon emissions.
0: ये नंबर international flights और maritime shipping से भी बड़ा है। Environmental organization Stand.Earth के मुताबिक आज के दिन अकेली ये शीन कंपनी हर साल लगभग लेबनान देश जितना कार्बन पॉल्यूशन एमिट कर रही है। सोच कर देखो, एक अकेली कंपनी की वजह से उतना ही कार्बन एमिशन हो रहा है जितना एक पूरे देश की वजह से हो रहा है। और अभी तक तो मैंने सिर्फ कपड़े बनाने की वजह से हो रहे नुकसान की बात करी है, उसके बाद क्या उन कपड़ों का क्या जिन्हें वेस्ट में डंप कर दिया जाता है। आइए वापस आते हैं अपने एटेकामा रेगिस्तान पर, जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी, जहां वेस्ट कपड़ों के पहाड़ मिलते हैं। दुनिया में यूज्ड और ना बिकने वाले कपड़ों से हर साल 9.2 करोड़ टन टेक्सटाइल वेस्ट पैदा होता है। ये हर सेकंड एक ट्रक भरे वेस्ट के बराबर है। इमेजिन करो, आपकी सड़क के सामने हर सेकंड एक ट्रक आ रहा है और ट्रक भरा वेस्ट वहां डंप करके जा रहा है हर सेकंड। इस सारे वेस्ट का 87% या तो लैंडफिल में जाता है या जला दिया जाता है। सिर्फ 12% रिसाइकल होता है, और वो भी ज्यादातर इंसुलेशन या रैग्स जैसे लो ग्रेड यूजेस के लिए। 1% से भी कम पुराने कपड़ों के वेस्ट से नए कपड़े एक्चुअली में बनाए जाते हैं। बहुत से कपड़े सेकंड हैंड यूज के नाम पर गरीब देशों में भेज दिए जाते हैं, जैसे चिली के एटाकामा डेजर्ट में, लेकिन वहां भी कोई पहनने वाला नहीं होता। सप्लाई इतनी ज्यादा है वेस्ट की कि उसे डंप कर दिया जाता है रेगिस्तान में। हर साल लगभग 39,000 टन कपड़े इस रेगिस्तान में डंप किए जाते हैं। इन कपड़ों के सिंथेटिक मटेरियल्स 200 साल तक डीकम्पोज नहीं होंगे, और जब इन पर आग लगाई जाएगी तो यहाँ से टॉक्सिक धुआं निकलेगा जो लोगों को बेहद बीमार कर सकता है। ऐसी ही एक लोकेशन है अफ्रीका में घाना का देश, जहाँ सेकेंड हैंड कपड़ों को ओबरोनी वावू कहा जाता है। इसका मतलब है डेड व्हाइट मैन्स क्लोथ्स, यानी मरे हुए गोरे आदमियों के कपड़े। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि घाना के लोगों को समझ नहीं आता कि कोई इतने सारे कपड़े आखिर क्यों फेंकेगा जब तक वो मर ना गया। घाना की राजधानी अकरा में एक मार्केट है कांटा मांटो, जो सेकंड हैंड कपड़ों के दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इस मार्केट में हर हफ्ते 1.5 करोड़ कपड़े आते हैं, लेकिन लगभग 40% कपड़े इतनी पुअर क्वालिटी के होते हैं कि पहनने लायक ही नहीं होते, और वो सीधे पहुंचते हैं अकरा के चोरकोर बीच पर। यहाँ पर इन कपड़ों की एक 6 फीट ऊंची लेयर बन गई है जो इतनी सॉलिड है कि इस पर झोपड़ियां बनी हैं, जिनमें हजारों लोग रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस वेस्ट में 89% मटेरियल सिंथेटिक फाइबर से बना है, यानी प्लास्टिक से। इसका मतलब ये सैकड़ों सालों तक डीकम्पोज नहीं होने वाला। घाना की ही तरह कंबोडिया में तो नाइकी, रैल्फ लॉरेन, नेक्स्ट जैसे लीडिंग ब्रांड्स का इतना वेस्ट है कि इसे जलाकर इससे ईंट के भट्टे चलाए जाते हैं। इंडिया में भी वेस्टर्न कंट्रीज से शिपिंग कंटेनर्स में सेकंड हैंड कपड़े आते हैं, जिनमें से कुछ इस्तेमाल होते हैं और बाकी डंप कर दिए जाते हैं। तो सोचकर देखना, अगली बार आप किसी दुकान में जाओ और 300 रुपए की टी शर्ट खरीदने चलो, ध्यान रखना कि उसकी असली कीमत क्या है, उस टी शर्ट के लिए कितनी नदियों को सीवर में बदल दिया गया है, रेगिस्तानों में कपड़ों के पहाड़ बन गए हैं, और एनवायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि यूनाइटेड नेशंस तक ने फास्ट फैशन को एनवायरमेंटल और सोशल इमरजेंसी बता दिया है। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि दुनिया के कुछ देशों ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने पिछले साल दुनिया का पहला एंटी फास्ट फैशन लॉ पास किया। इस लॉ में इकोलॉजिकल
2: रिपोर्ट मैं चाहता सी जो भी अक्सर बाहर जाने जो फैमिली मैंबर जेडे ने शॉपिंग करते अक्सर सूटा की गलबात की जाती है, सूट लै दे सूट लै दे सूट ना लै दे जा कपड़े ले लो। मैं खुद बड़ी शॉपिंग करता, मैं इट्स नॉट कि भी मैं किसी नु कहना चाहना, पर यह है भी ये जड़ी ध्यान रखना चाहिए। इन्ना कुछ आप कट्ठा करते रहने, इन चीजा कट्ठिया करते रहने, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਲਿਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਲੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.4

0: कुछ होता है, फिर आप ले लें खलना ये डर राजा हिंदुस्तानी अंदाज अपना अपना रंगीला
1: बहुत
0: हम आपके हैं कौन बाजीगर दिल तो पगला भी तो अभी जिसमें करण अर्जुन परदेश जिसने भी इतने गाने हैं जिसमें अगर वो अगर 40 घंटे का अगर 40 घंटे का शो होता है तो इनफ नहीं होगा तो इतने एक से बढ़कर एक गाने हैं तो उसमें से कुछ गाने आज हम जो है आपकी खिदमत में जो है पेश करेंगे और जो शो में जो आर्टिस्ट होंगे मून अहमद जो कि पहले कैलगरी में रहती थी नाउ शी लिव्स इन यूएस तो वो आएंगी और फिर यहाँ के हमारे कैलगरी के सागर आचार्य यस तो सागर ही इज इन इंडिया राइट नाउ लेकिन हाँ वो दो हफ्ते में आ रहे देन ऑफ कोर्स ही विल बी ऑन द शो एज वेल वेरी सून
1: Good.
0: तो उसको जो है शो में ले आएंगी फिर आपको
1: नहीं मून मून को तो गए हुए यहाँ से काफी अरसा हो गया
0: 10 साल हो गए
1: तो वो बड़ा अच्छा गाती हैं और अक्सर हमारे जब यहाँ पर थी तो हमारे प्रोग्राम में आया करती थी और हमारे साथ उन्होंने प्रोग्राम भी किया है गानों का और बहुत प्यारी सी आवाज है आपने इनका वीडियो तो सुना होगा जलाल ने डाला था फेसबुक पे तो बहुत अच्छा गाती है सागर भी बहुत अच्छा गाते हैं तो दोनों मिलके उधम मचाने वाले हैं और 90s के गाने तो क्या बहुत ही पॉपुलर मूवीज थी उस जमाने की तो बहुत मजा आएगा आपको तो आप अभी से बुक कर लीजिए अपने आप को 3 अक्टूबर के लिए फिर नहीं कहिएगा कि आपने आपको टिकट नहीं मिले क्योंकि हमारा पिछला वाला म्यूजिकल प्रोग्राम भी जो जलाल ने किया था बहुत लोगों को पसंद आया था वो रफीका और सोनू निगम के गानों का था इस दफा 90s के गानों का है
0: जी बिल्कुल
1: तो, हाँ
0: तो लीजिए अगला गाना जो आज का जो पहला गाना जो है सुनते हैं
1: जी जरूर
0: लेट मी पुट इट ऑन और हियर वी गो

0: चलो मैं आपके लिए जो है एक दूसरे नए कनेक्शन से प्ले करता हूँ. लेट मी गिव मी टू सेकंड.
1: जरूर.
0: सीम्स लाइक देयर इज एन इशू विद माय आईपैड.
1: अब अपने फोन से लगा लें.
0: या फोन से लगा लेते हैं. हियर वी गो. और
1: आप कौन सी मूवी का गाना सुनवा रहे हैं?
0: As soon as I find it.
1: ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए, करिए, मैं लोगों से बात
0: करें यहाँ पे.
1: तो आज है ना, हमारे पास इत्तफाक से कोई मेहमान नहीं है, लेकिन हमने सोचा कभी कभी आप लोगों की और हमारी पसंद के भी गाने सुनने में मजा आता है. हम लोग वो ज्यादा कर नहीं सकते हैं क्योंकि अक्सर हमारे पास गेस्ट आए हुए होते हैं. तो आज हमारी शाम खाली थी तो हमने सोचा कि आपको, आपसे बातें भी करेंगे, कुछ शायरी भी सुनाएंगे, कुछ अच्छे गाने भी सुनाएंगे. तो आज है, आप फरमाइश भेज सकते हैं हमें अपने पसंद की, जो भी गाना सुनना चाहें. तो आज की शाम आपके नाम.
0: Here we go. So let's start with this song.

ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर, उदित नारायण एंड साधना सरगम जी की आवाज की आवाज में। ये तो आपको ऐसे ही गाने मिलेंगे अक्टूबर की 3rd को, जो कि सैटरडे का दिन है, मिर्ची रेस्टोरेंट का जो बैंकेट हॉल है जो कि ऊपर है अपना अपस्टेयर्स है फर्स्ट फ्लोर पर, तो वहां पर है। एंड टिकट्स आर ओनली $40 and $50। आज का जो शो इसको स्पॉन्सर किया है कंट्री टोयोटा। इनका कहना है कि इफ यू लुकिंग फॉर एनी कार एनी टोयोटा यू कैन विजिट देयर वेबसाइट 24 आवर्स chtoyota.com और यू कैन कॉल देम 403-290-1111। थिंक टोयोटा, थिंक द जायंट कंट्री टोयोटा। मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट रूबीना कासिम अली, इफ यू लुकिंग फॉर एनी मॉर्गेज शी वर्क्स फॉर टीडी बैंक, यू कैन कॉल हर एट 403-870-7069 एंड शी विल बी एबल टू गिव यू द बेस्ट रेट 403-870-7069। केयर सर्कल होम हेल्थ कैलगरी, इनका फोन नंबर है 587-900-0290। अगर आपके घर में कोई भी सीनियर है, अगर उनको हेल्थ के जो बेनिफिट्स अगर आपको लेने हैं अल्बर्टा हेल्थ केयर से, आपको दे कैन डू द डायरेक्ट बिलिंग टू देम, बट जस्ट कॉल देम आवर गुड फ्रेंड नदीम 587-900-0290। हमजा बट फ्रॉम द बटकराई बैंकेट हॉल, अगर आपने कोई इवेंट करवाना है वेडिंग या तो फिर बर्थडे पार्टी, यू कैन कॉल हिम एट 587-352-0094। नसीम ज्वेलर्स कैलगरी, आपको जो है पाकिस्तान की ज्वेलरी की डिजाइन आपको जो है कैलगरी में मिलेगी, आवर गुड फ्रेंड शेजत मियां सब ही ओन्स इट। इनका फोन नंबर 8259875000। आयज भाई बशीर, अगर आपने कोई कॉन्टेक्ट लेंस सनग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन ग्लास लेने हैं तो यू कैन कॉल बशीर, लाइक एवरीवन जो है एवरीवन नोज हिम 403-720-3937। अगर आपने वेबसाइट बनवानी है या तो एनी आईटी बिजनेस करना है तो यू कैन कॉल साई राम, जो क्या सिद्धार्थ शर्मा एंड साक्षी शर्मा, इनका फोन नंबर 306-715-8707। इनकी जो कंपनी है साई राम आईटी कंसल्टिंग इन कंपनी 306

0: 715-8707।
1: या आपका ये जो गाना था, उम्मीद है कि हमें जितना पसंद आया और लोगों को भी पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे गाने हैं 90s के, क्योंकि बड़ी मशहूर हुई थी उस जमाने में मूवीज और उनके गाने भी इतने ही मशहूर हुए थे। तो ये जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं वो इसी तरह के गानों का होगा और आपको बहुत मजा आएगा। आप आकर बैठिए और एंजॉय करिए गानों को। तो फिर आप कुछ सुना रहे हैं कि एक गाना,
0: चलो मैं आपको जो वेदर की अपडेट दे दूं।
1: वेदर की अपडेट,
0: आजकल वेदर वैसे अप एंड डाउन काफी हो रहा है।
1: हाँ, लेकिन आज बड़ा अच्छा मौसम,
0: आज अच्छा रहा,
1: बहुत ही अच्छा मौसम।
0: इट्स गोना गो डाउन टू 12। कल वेनेसडे इट्स क्लाउडी एंड सनी, पार्टली क्लाउडी 26 and 13। थर्सडे चांस ऑफ शावर्स 25 and 12। फिर फ्राइडे गेटिंग हॉट 28 and 12। फिर जो सैटरडे इट्स हॉट अगेन 27 and 15। संडे शावर्स 21 and 11। मंडे सनी 25 and 11। ट्यूजडे 28 and 11, जो कि नेक्स्ट ट्यूजडे एक हफ्ते बाद। वेनेसडे 22 and 9 एंड थर्सडे 21 and 9।
1: नहीं, अच्छा जा रहा है
0: वेदर सो फार। या
1: थोड़ी जो इतनी लगातार बारिशें हुई उसके बाद तो हमें चाहिए कि एक बारिश के बाद जब ये इस तरह का सनी होता है तो अच्छा लगता है। और फिर पता है आपको कि सितंबर इज अराउंड द कॉर्नर और वो उसमें तो हमारा फॉल शुरू हो जाता है एंड में। तो फॉल जब रॉकीज में हम घिरे हुए हैं तो हम यहाँ की जो गर्मी होती है बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। सुबह ठंडक होती है, फिर दोपहर में गर्मी होती है और शाम में ठंडक होती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रॉकीज, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं मिलती है। तो जितनी भी आपको अच्छे 26 से 25 से अबव टेम्परेचर मिले आप इंजॉय करिए, क्योंकि फिर आप वापस से सितंबर की एंड से और अक्टूबर में हल्की हल्की ठंडक शुरू हो जाती है।
0: ठंडक शुरू हो जाएगी, बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप कोई गाना सुना रहे हैं, गाना सुना रहे, उसके बाद में आपको एक अच्छी सी शायरी सुना।
0: ठीक है, चलो, ये सबका फेवरेट गाना है, 1942 लव स्टोरी।

0: Beautiful track from the movie 1942 Love Story. वो आवाज थी कुमार सानू की, म्यूजिक था आरडी बर्मन. और आपको ऐसे ही गाने, बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे अक्टूबर की 3rd को, जो कि सैटरडे की रात होगी, और जहां पर अपना मिर्ची रेस्टोरेंट का जो अपना बैंकेट हॉल है अपस्टेयर्स, वहां पर शो होने जा रहा है. $40 and $50 आर द टिकट्स इंक्लूडिंग डिनर. यू कैन कॉल एंड टेक्स्ट 587-899-4786.
1: जी, ये गाना जो था ना, मुझे अभी तक याद है कि अपने जमाने का सब काफी सारा पॉपुलर गाना था
0: जी.
1: और हर हीरो के जुबान पे ये गाना होता
0: या,
1: था
0: या, या.
1: और हर महफिल में ये बजता था और हर एक इवेंट में ये गाया जाता था और बड़ी धूम थी इस गाने की. और अभी तक जब भी इसको सुनो, क्योंकि इसकी जो शायरी है, लिरिक्स हैं, वो बहुत खूबसूरत है और अच्छा लगता है सुनने को. तो इस पे याद आए, एक शायरी हम भी आपको सुनाते चले. ये है एक शायर है अमजद इस्लाम अमजद, उन्होंने लिखी है. तो ये है इस तरह से, कई आरजू के सराब थे जिन्हें तशंगी ने बुझा दिया. मैं सफर में था किसी दश्त के, मुझे जिंदगी ने बुझा दिया. वो जो कुछ हसीन से ख्वाब थे मेरे आंसुओं ही में घुल गए. जो चमक थी मेरी निगाह में उसे एक नमी ने बुझा दिया. ये धुआं धुआं जो ख्याल है इसी बात की तो दलील है. ये धुआं धुआं जो ख्याल है इसी बात की तो दलील है. कोई आग मुझ में जरूर थी जिसे बेहसी ने बुझा दिया. वाह क्या बात है. मेरे वसतों की हदों तक मेरी धड़कनों ही का शोर है. मेरे गिर्द इतनी सदाएं थी उन्हें खामोशी ने बुझा दिया. अरे क्या डीप मीनिंग है. कहां खत्म है मुझे क्या पता, मेरी कशमकश का ये सिलसिला. मैं चिराग बन के जलाई था, मुझे फिर किसी ने बुझा दिया. अरे वाह. वो जो एक सफर का जुनून था, वो जो मंजिलों की तलाश थी. वो जो एक सफर का जुनून था, वो जो मंजिलों की तलाश थी. जो तड़प थी मुझ में कहां गई, मुझे किस कमी ने बुझा दिया. अरे वाह. वो हुआ था रात जो हादसा, मुझे शायद इतना ही याद है. वो हुआ था रात जो हादसा, मुझे शायद इतना ही याद है. कोई जुगनों की कतार थी जिसे रोशनी ने बुझा दिया. अरे वाह क्या बात है अमजद साहब, आपकी बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत शायरी थी. जी, ये ऐसी ऐसे गानों पे ऐसी शायरियां याद आ जाती हैं. चलें और एक अच्छा सा गाना सुना दें, फिर हम आपको कोई और अच्छी सी शायरी सुना.
0: ओके, हियर वी गो, लिटिल बिट फास्टर सॉन्ग.
1: जी बिल्कुल.

0: Sidney Noyet ka subs, one of the best songs from the 90s. Yes, Chaiya Chaiya from the movie Bombay. Aur ye gana kisko yaad nahi, kisko pata nahi hai, jisme Shah Rukh Khan, Anjum, Manisha Koirala aur music ka AR Rehman saab ka.
1: Yeah. बहुत तो आप गाना सुना रहे हैं कि मैं शायरी सुना
0: आप शायरी सुना देन विल टेक अ ब्रेक
1: ओके तो ये जो शायरी है बड़ी खूबसूरत है इसको आप अच्छे से सुनिएगा इसमें बहुत सारी मैसेजेस हैं और इंसान के साथ बहुत कुछ चलता रहता है लेकिन इसमें ये इन्होंने लिखा है इनके शायर का नाम नहीं लिखा हुआ जिंदगी है खूबसूरत जिंदगी है खूबसूरत तुम उसे जीना सीखो गम की राहों में भी हंसना मुस्कुराना सीखो वाह क्या बात है हर घड़ी है एक तोहफा हर पल एक कहानी ख्वाबों के दीप जलाकर साथ चलना सीखो रंजिशें और माजी की तलख यादें छोड़ दो रंजिशें और माजी की तलख यादें छोड़ दो नए सफरों में खुद को फिर से पाना सीखो वाह क्या बात बोली है धूप छांव का ये मौसम धूप छांव का ये मौसम वक्त का ये खेल है हर खिजां के बाद बहार का आना सीखो
0: सीखो यस
1: दर्द हो या खुशी हो दर्द हो या खुशी हो सब फानी चीजें हैं दिल को राहत दो और हर पल को पाना सीखो क्या अच्छी इन्होंने इतनी अच्छा मैसेज दिया है इसमें सबके साथ गम तो लगा ही रहता है ना
0: यस यस
1: जिंदगी की इस किताब में जिंदगी की इस किताब में हर है हर सफा नया खुद को नई रोशनी में ढालना सीखो क्योंकि देखें गम के बाद खुशी और खुशी के बाद गम तो ये तो दुनिया के साथ और जिंदगी के साथ चलता रहता है लेकिन हमें जिस तरह हम उस अपना एटीट्यूड रखते हैं वो सारी आपकी पूरी जिंदगी को या तो हंसना सिखाता है या रोना सिखाता है तो ये कह रहे हैं बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है बड़ी बड़ा अच्छा मैसेज
0: चलो मैं आपको एक और
1: बिल्कुल जरूर सुना
0: इसी टॉपिक पे
1: अच्छा ठीक है
0: ओके गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर जो होना है वो होकर ही रहेगा
1: जी
0: तो कल की फिकर में आज की हंसी बर्बाद ना कर
1: बहुत सही बात बोली बिल्कुल इसी शायरी इस, ने जो बोला
0: एग्जैक्टली सेम
1: बिल्कुल point. सही बात
0: तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक यू आर लिसनिंग टू सलाम नंबर कैलगरी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम
2: ਕਲਗਰੀ ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਖੁਦ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ

0: टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है ते ओता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उन्हां नूं फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 Sonic Insurance.
1: वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते कैलगी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम जी अब अभी 8:45 हो गए तो खाली 15 मिनट हमारे पास रह गए खाली हम जो एक शो के बारे में बात कर रहे थे अक्टूबर 3 को होने जा रहे हैं जो अपना जो इवेंट का जो थीम है कुछ कुछ होता है जिसमें आपको जो है बॉलीवुड के 90s के सारे हिट जो सारे सॉन्ग है वो आपको जो है सुनने के लिए मिलेंगे और दो सिंगर जो है एक मून अहमद के नाम से जो कि अपने टेक्सास से आ रही है अपने यूएस से आ रही फिर हमारे कैलगरी के सागर आचार्य होंगे टिकट्स आर $40 and $50 अगर आपने जो है टेक्स्ट करना हो यू कैन टेक्स्ट मी 5878994786 लीजिए ये इवेंट का जो टाइटल सॉन्ग है कुछ कुछ होता है सलमान जी आपको ये सुनना है
2: जी सुनाइए
1: ये सुपर डुपर गाना है लेट्स एंजॉय ऑल टुगेदर
2: जी जी

0: ऐसे बहुत सारे गाने आपको सुनने को मिलेंगे अक्टूबर के 3 तारीख को जब भी कुछ कुछ होता है इवेंट होगा एट मिर्ची रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल। तो लीजिए जी सलमा जी।
1: जी मैं आपको एक बड़ी प्यारी जी छोटी सी नज़म से सुनाना चाहती हूँ। तो ये है, शहर साहब ने ये बोला है, जब कांच उठाने पड़ जाएं, जब कांच उठाने पड़ जाएं, तुम हाथ हमारा ले जाना। अरे वाह क्या बात है। जब समझो कि कोई साथ नहीं, तुम साथ हमारा ले जाना। जब देखो कि तुम तन्हा हो, जब देखो कि तुम तन्हा हो और रस्ते हैं दुश्वार बहुत, तब हमको अपना कह देना, बेबाक सहारा ले जाना। अरे वाह। जो बाजी भी तुम जीतोगे, जो बाजी भी तुम जीतोगे, जो मंजिल भी तुम पाओगे, हम पास तुम्हारे हो ना हो, एहसास हमारा ले जाना। अरे वाह। अगर याद हमारी आ जाए, अगर याद हमारी आ जाए, तुम पास हमारे आ जाना, तुम पास हमारे आ जाना, बस एक मुस्कान हमें देना और जान हमारी ले जाना। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: वाह वाह वाह।
1: आप क्या सुनाने जा रहे हैं?
0: जी तो ये हमारे स्टेशन के जो स्पॉन्सर्स हैं, सोनिक इंश्योरेंस, मानस पोजेसा, अगर आपने कोई इंश्योरेंस लेना हो तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉल सोनिक इंश्योरेंस 5878321200। दे आर स्पेशलाइज इन ट्रक इंश्योरेंस। वावेसी होम केयर, जो हमारे दोस्त हैं वीरपाल दत्त, अगर आप उनको जो फोन कर सकते हैं 8257600983। अगर आपने गवर्नमेंट से जो है सीनियर के लिए कोई आपको जो है सर्विस चाहिए थ्रू Alberta Healthcare, so they can direct bill to Alberta Healthcare and you can get the services for the seniors done at home. Oasis Smile Medical, jo ki dental jo hai apna doctor hai jinki apna clinic jo Sunridge mein hai aur they are open 6 days a week. Inka phone number 587-617-4696. Mercedes Benz Country Wheels, like our good friend Gaurav, he's amazing. He's a manager aur aaj kal bahut achi deals bhi aayi hui hai at Country Wheels Mercedes Benz. Inka phone number 403-903-6757. Aur phir Punjab Insurance, agar aapne supervisor insurance ya to life insurance lena hai, you can call our good friend Harpinder Sidhu saab. Inka phone number 403-404-3500 aur they are in Cityscape Landing Plaza mein inka maujood hai. Mother India Restaurant, jo ke 24 hours he is open, you can enjoy North and South Indian cuisine, over 40 delicious items. Inka phone number 403-936-777 or you can get, agar aapne koi party up to 40 guests, they'll be able to help you as well. Pixel 42 Studio, agar aapne koi picture nikalna ho for social media ya to passport ke liye ya to family photos or ya to baby photos, you can call Pixel 42 Studio. Inka phone number 403-947-0060. Agar aapne koi printing karwani ho high quality pictures, so they can do it as well. जी सलमा जी।
1: जी तो आप हमें अब क्या सुनाने जा रहे हैं?
0: बस तो आई थिंक हमारे टाइम का एक ही गाने का रह गया है, 854 तो हो गया है।
1: जी जी जी।
0: तो हाउ अबाउट मोरा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, वन ऑफ द फेवरेट फ्रॉम 90s। हियर वी गो।

0: एतवार जरूर कल बात करो। जग्गी टलोंदा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गाल करके कोई हल लब्भो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
4: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उन्हां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
3: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
5: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग।

0: 94.7 FM ते सुनो हफ्ते दे वी घंटे रेडियो सुरसंगम radiosursangam.ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: तुसी शायद इस नू बदसलूकी ना समझो पर अपने जीवन साथी नू धमकी परे सुनेहे भेजना उस दी लोकेशन चुपचाप ट्रैक करना जा उस दे फोन दियां गतिविधियां ते काबू रखना भी अब्यूज ही है टेक्नोलॉजी राही कीती जाण वाली बदसलूकी शरीरक नहीं हुंदी पर इस दा असर उना ही गंभीर ते नुकसानदायक हो सकता है जे तुसी जां तुहाडी जान पहचान दे विच कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी दी वरतों करके किसी नू नुकसान पहुंचा रहा है जां उस नू काबू करन दी कोशिश कर रहा है तां बदला संभव है हिंसा नू खत्म करन बारे होर जानकारी लई alberta.ca/endgbv ते जाओ अल्बर्टा सरकार वल्लों एक सुनेहा
0: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते 20 घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम.ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
2: The following program speaks to the South Asian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7 FM